की परम सत्कार योग साजी नवाज जी गुरु का रूप स्वरूप साध संगत जी गुरु के खास रूप खालसा साहेब जो जो गुरमुख प्यारे गुरसिख माई भाई वृद्ध बालक गुरु साहेब सचे पातशाह जी के पावन दरबार विच हाजिर होए हो वो सारे दे सारे मनुख जन्म दे भले वास्ते

या बाणा को पंडित गुरु की परम सत्कार योग साथ संगत कई सज्जन गुणी ज्ञानी रागी महापुरुष ये वचन आखदे मैं सुने ने जी गुरु नानक ने बड़ी कृपा की जेड़ी सानू बाणी बख्शी है बड़ी सौखी है पर मैं अजे तक इस गल नू सिर नीवा करके मनिया नहीं भाई बाणी सौखी है मैं बाणी नू बहुत औखा मनदा गवांडी जबाना ने अनंत शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच मौजूद है मिसाल के तौर पे पाताली आकाशी सखनी लहबर बूझी खाई रे लहबर लहब लहीब ये अरबी के लफज ने जिदे मन ने शोलेदार अग बड़ी परखवी अग कृष्णा की अग जेड़ी आकाश और पताल के पदार्थ पा के भी अजे भी लाटा छड़ रही थी अजे भी जला ही रही थी वो लहबर बूझी सतगुरां की रहमत हुई वो अग बुझ गई ऐसी बुझी खाई खाई मैंने खै मैंने नाश हो गई ऐसी बुझी के नाश ही हो गई मैं शायद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नाल बचन बिलास करदे हां हजूर का अमृत बचन पढ़िया के वंचित नहीं बांछित मैंने मंगना चाहना लोचना तू भावे चाहता नहीं भावे तू मंगता नहीं दुनिया पुत्र धन पदार्थ कुटुंब कबीला मकानात मोटर आदक से बथेरा कुछ तू मंगना पर आ चीज तू मंगता नहीं बांछित नहीं भावे तू मंगता नहीं पर वो बेरा आई उस वेले ने आ ही जाना भावे मंग भावे ना मंग उस वेले नु टाल नहीं सकता बांछित नहीं सो बेरा आई बिन शब्दे क्यों बुझे बुझाई ठंडी तत्ती मिट्टी खाई मैं जदों महापुरुषां दी चरण शरण सां जिहड़े सुहावने दिन कदे कदे याद आउंदे ने ते आवें हौका जिहा निकल जांदा मैनू उन्हां ने एक सूत्र पढ़ाया।

तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण न साको तू ठाकुर ऊच भगवाना फिर आई कर अर्जुन पुत संसारी गुरु कहावा जान न देसा सोडी ओ होर से अजर न जरिया जावा करह की वाथो करह रहावा करह की वाथो करह रहावा पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरपारी अर्जुन काया पलटका मूरत हर गो

जैसे एक नदी तरंग कोट उपजत ने नद कहते ने नदी तरंग पानी दिया लहर कोट करोड़ जैसे एक पानी दिया लहर कोट करोड़ जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है

काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व तापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस देवाय नमस्तंग पे वाय नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गावने नमो सर्व पावने नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस दयाले नमस्तंग वरणे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कर्तारंग नमो सर्व तंदे नमस्त बंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहिमे नमस्तंग क्रीमे नमस्तंग रंते नमस्तंग महंते नमस्तस रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सौख नमो सर्व पोख नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद उत्ता प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है भू है लिखा पीका नाम है काम है ते है पे है जीत है पीता त्रिमान है नदहन है त्रिवर्ग है सर्ग है नील है नाद है जे है जाद है जन्म है वर्ण है अपूत है भरण है गंज है भांजया झूजया झांजया मीकर फीका तंद है बंद है निर्बूज है सूज है काल है जल है लाह है जाह है अनंत है महंत है अलीकर निरसलीकर निर्लंब है सम है गम है जम है अभूत है सूत है लोक है सुख है कर्म है परम है जीत है पीत है बाह है गाह है मान है निदान अनेक है फिर एक है भुजहु प्रयात छंदे नमो सर्व मान्य समस्त निदाने नमो देव देवी पेकी पेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौने अनंगी अनाथ निसंगी पंबाते नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनाम समस्ती स्वरूपे प्रपंगी प्रमाते समस्ती विभूते कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणी नमो अस्त्र माणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखिये परमीय भोगिये भुगते नमो जोग जोगेश्वरंग परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो भू भूपे नमो दान दानी नमो मान मानी नमो रोग रोगे नमस्तंग इशनान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्व प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दाबल दाबल करता अद उर्द अर्दंग अगंग ओग हरता परम परम परमेश्वरंग पुरुषपालंग सदा सर्वदान सिद्ध दाता दयालंग छेदी भेदी नाम काम समस्त उपराधि समस्त स्थान तेरा जोर चात्री छंद जले है थले है पीत है पे है प्रभु है जू है दिस है पिस है भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नवसर मान समस्त निधानी नमस्त वंगनाथे नमस्त वंग परमाथे नमस्त वंग अगंजे नमस्त वंग पंजे नमस्त वंग अकाले नमस्त वंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व भेसे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो सुख सोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्वदृसंग नमो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे त्रिभंगे अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे पिजे समसंग प्रसिजय कृपालंग स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्ध मुनवासी चरपट छंद उत्ता प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल त्रिमुगल अकर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग बाने सर्वंग प्राणु सर्वंग त्राणु सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूवाल छंद त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुरख पारु सर्व मान तिरमान देव पेवाद उदारु सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जत्र तत्र बराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जागर रूप रंग न रेख याद पुरख आधार मूर्ता जौन आदि सेख देश और न पिह जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुई फैले और राग नाम काम विहीन पेख स्तम न जाय सर्वान सर्वत्र मानस दया मन ताहे
एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूपा नेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देपे बिना जान ही जेह भेद और कतेब रूप रंग न जात बसो जान ही कह जेब तात्मात्मा जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्कर बकर फिराए चतर चक मन ही पुरती नो लोग चाहता है कि बिखा जग जापे जह जाप आद देव अनाद मूर्त थापे सबह जि थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण प्रख पार सर्व सवृत्यो सयम पवगरण पंजन हार कालहीन कला स्नुगत काल पुरख देश धर्म धम सो भरम डात भूता लख पीस अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भगन जन दुष्ट भजन मुक्त दाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवधूत गर्भगन जन सर भंजन याद रूप सूत अंगहीन भंगनात्मिक पुरख पारु सर्व लायक सर्व काय सर्व को प्रत पारु सर्व गंता सर्व हंता सर्व ध्यान भेख सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग अरेख परम वेद प्राण जा कह नित भगत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवि बह चित मद पार छंद तप प्रसाद गुण गान उदार महिमा पारासन भंग पुनांगन भव प्रकाश निस्त्र नास राजन बाहु साहन साहु राजन राज भाणन भाण देव बण देव महान इंद्र इंद्र बालन बाल रंकन रंक कालन कालन भूत अंग अब भंग गत मित पार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश कर्म अदृश्य त्रम सर्वा प्रणा डैंडन बाड्यंग चाचरी छंद तप प्रसाद

सुभाष है के आदि स्वरूप है के मितौ बेपूत है के मितौ बसाह है के आत्म प्रभ है के अतिलंग अनंग है के मितौ भंग है मत भार छंद प्रसाद मोन मन प्रणाम गुण गर्म दम हर भर गंज हर नर प्रपंज अन गण प्रणाम मोन मन सलाम हर नर खंड बर नर मंड अन पहु नास मोन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदम अन छे जंगासन भंग उपमा पारु गत मित उदार जल थल महंत दिस विस बेअंत जल थल अमंड दिस विस पंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अन पहु नास त्रित तर त्रास आजन बाहे कस दाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुर बर काल कर कर प्रणाम चित चिर नाम अन छिज गात अजन बात अन चंज गात अनंज बात अन टोट भंडार अनठट उपार आडीठ धर्म अत टीट कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद ता प्रसाद करणाल अर कल है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व बारण है त्रित के धरण है जाके कर्ण है मन माने है जग जाने सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास है सरना सै करना कर है विश्व पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पर ते पर है करना कर है जप जप तप थप है कृता कृता अमृता अमृता अमृता अमृता करना कृता कृता कृता धरणी त्रितम तीसर है परमेश्वर है अकृता कृता अमृता अमृता अजबा कृता अमृता अमृता नर नायक है कल कायक है विश्वंपर है करुणालय है नृपनायक है सृपायक है पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृता करता कर है हरता हर है परमात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजहं प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम चुंसात रूपे नमो परम तत्ंग अतत्ंग रूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रनाथन विभूते कलंकर रूपे कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आसासी नमो बांग बंके अभंगी स्रूपे अरंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अरंगी कामे एक छरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजुआ नस कस अगंज पंज लख पख अकाल दयाल अलेख भेखा नाम अकाम अगाह ढाह नाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे करम परम गंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे नकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्म प्रणासी सो धर्म विभूते सदा सचदानंद स्त्रम प्रणासी करिमर कुनिंदा समस्त निवासी अजाय विभूते कजायब गनीमे हरियं करियं करिमर रहीमे चतर चक्र भरती चतर चक्र भुगते सुजियं भगु सुभं सर्वदा सर्वजुगते

सदाय अंग संगे अपंग अंग पुते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवें त्वा प्रसाद सवैये श्रावक सद समूह सुधार के देख फिरो घर जोग जति के सूर सरार्दन सद सुधारक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे मत को न देख प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बने रति के माते मतंग जर जर संग अनुपतंग सरंग सवारे कोट तरंग करंग से कुदत पवन के गौन को जात निवारी भारी भजन के भूपली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे इते भय तो काह भय भूपत अंत को नागे ही पाए पधारे जीत पिरा सब देश दसान को बाजत ढोल मृदंग नगारी गुंजत गुड़ गजानक सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भगवान के भूपत कौन गणन जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत की धाम सुधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसिखाए वेद पुराण कतेब पुराण जमीन जमान सुबान के पेखाए पवन आहार जति जतार सब सब चार हजार क देखाए श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति मने एक न लिखाए शुद्ध सिपाहा दुरंत दुबाह सुशासन दुर्जान दलांगे भारी गुमान पर मन में कर पर्वत पंख हले न हलांगे तोर अरीन मरोर मुवासन माते मतंगन मान मलांगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान दान चलांगे वीर पार बड़े बरियार बचार हिसार की धार पचाइया तोर देस मिलिंद मुवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गड़ा के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहु श्री सब को सरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंद्र साचर भूत भगवान जपांगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थप थप फल थपांगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थप थपांगे पुन प्रतापन बढ़ जा तो नौ पापन के बहुपुन खपांगे साध समूह प्रसन्न फिरा जग सत्तर सब अवलोक चपाएंगे मानव इंद्र गजेंद्र नाद पौ जाऊन तरलोक को राज करांगे कोट स्नान गजात गदार अनेक स्वंबर साज भरांगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिव पात्र अंत फसे।

0: चीज
1: मन का सुत भय जेवा सूत कूड़ अखी सुत वेखण परत्र परतन रूप कनी सूत कन पहला तवारिखाय नानक हंसा आदमी बद जमपुर जाय।

बाजे अनहद तूरे। बोल जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी के पातशाही दसवी प्रथम भगवती समरका गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय।

रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा कर पला तेरे कार्य ना

बोल जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई।